0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, गुरुदेव ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, तथा संतों के सत्संग से जीवन की बुराइयां दूर होती हैं। हम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, अतः इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा लड़ेगी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। नगमे जो हमने चुने हैं सुनवाने के लिए, इसमें आपको सुकून मिलेगा, इतना एहसास है मुझे। ऐ जिंदगी, खुदा करे कि आपका आज का दिन खुशियों से भरा हो और आपकी आज के दिन हर जायज़ वाली ख्वाहिश पूरी हो और आप हमेशा खुश व आबाद रहे और तंदुरुस्त रहे। है बहुत मशहूर ये किस्सा उमर फारूक का।

अभी आपने मुकेश जी की आवाज में ये बयान सुना। तू ही सुख दे, तू ही दुख दे, तेरे चरणों में अपने चारों धाम, सुनाएंगे श्री जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मजहबी और भक्ति संगीत सुनवाए। आसमान पर नजर है लोगों की, चांद उनका वहीं पर रहता है। मैं आसमान पर क्या ढूंढूं, चांद चांद मेरा जमीन पर रहता है। तो चांद ने भी आज हमसे पूछा, क्या क्या कोई इतना हसीन भी होता है।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गजल अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ों में कलाम था शायर जावेद अख्तर का। तुझसे मिलने का बहाना चाहता हूँ मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उस पल का मैं तुझे गले से लगाना चाहता हूँ।

फिल्मी गजल पेश थी, मौसिकार रवि की मौसिकी थी और कलाम था शायर राजेंद्र कृष्ण का। सुन लिया और देख लिया हमने फैसला तेरा, और सुनकर उदास हो बैठे, जमीन चुपचाप आँख खाली है, जैसे जैसे हम कायनात खो बैठे।

सुनहरी दौर का महान गायक पंकज मल्लिक से पेश था ये गीत। दर्शकों लिखने वाले थे शायर बी सी मधुर। अब आ रहे हैं दिल खुश करने एक साथ लता मंगेशकर और सुबीर सेन।

सदाबहार डुएट पेश था शंकर जयकिशन का संगीत रचना और हसरत जयपुरी का लिखा तर्स था। इसी अंदाज में लीजिए पेश है अगला गीत।

अमर गीत पेश था शंकर जयकिशन, संगीत से सवारे थे और गीतकार था शायर शैलेंद्र ने। सच कहता हूँ बहुत हसीन हो, सुनाएंगे मोहम्मद रफी साहेब और आशा भोसले जी।

मोहब्बत भरे अंदाज में पेश था ये दो गाना। संगीत से सवारे थे संगीतकार ओपी नैयर ने। फिल्म अनारकली में से सुनवाते हैं ये गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको हल्के हल्के मीठी धुनों में गाने सुनने को मिलते हैं, जैसे कि ये गीत हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में।

फिल्मी दुनिया में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने महान अदाकार धर्मेंद्र के बारे में इत्तला किया था। ये बतलाई थी कि उसने नेहतिन शेस्तक से लेकर नेहतिन फैफ शेस्तक के दरमियान 20 फिल्मों में काम किया था। कुछ फिल्में हिट हुई और कुछ फिल्में अवाम ना पसंद किया। हाँ, एक फिल्म के बारे में धर्म ने कहा था कि उसे खुद की फिल्म फूल और पत्थर पसंद था। इस फिल्म के बाद धर्म पीछे मुड़कर देखा नहीं। प्रोड्यूसर ओपी रलहन की फिल्म आई मिलन की बेला में काम किए थे धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार। इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार नेहतिफ किरदार था, फिर भी अवाम उसे इस किरदार में पसंद किया। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्मेंद्र और मनोज कुमार एक ही मकसद से मुंबई आए थे एक्टर बनने को। दोनों में दोस्ती थे और आपस में वादा किए थे एक साथ फिल्म में काम करने को। पहली फिल्म जिसमें दोनों एक साथ काम किए थे वो थी फिल्म शादी, जो नेहतिन तुम्हें शस्त्र में रिलीज हुआ था। इसी फिल्म शादी में से सुनवाते हैं ये गीत।

फिल्म शादी में से ये गीत पेश था। इस फिल्म में धर्मेंद्र, मनोज कुमार और शायरा बानो ने काम किए थे। इस गीत से पहले आपने सुना कि फिल्म फूल और पत्थर, जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काम किए थे, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। अवाम इस फिल्म को पसंद किया और धर्मेंद्र की एक्टिंग अवाम के दिल पर छा गया था। दोनों इस फिल्म में उम्मीदवार भी थे। जवारन वेल्ख नॉमिनेट फॉर बेस्ट एक्टर्स। इस फिल्म के बाद धर्म कई और फिल्मों में उम्मीदवार थे। फिल्म आई मिलन की बेला सपोर्टिंग एक्टर की, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, रेशम की डोरी और नौकर बीवी का नेखतिंद्रियन तख्तख में। लेकिन आखिरकार नेखती नेखतख में धर्मेंद्र को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, और वो भी उनके खुद का होम प्रोडक्शन फिल्म घायल की। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री अहम किरदार में। साथ में थे राज बब्बर, मौसमी चटर्जी। बेस्ट एक्टिंग अवार्ड धर्मेंद्र को पहली बार मिला वो था नेखतिंद्रियन तख्त में, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बंगाल के अवाम धर्म को सराहते थे, वो द एक्शन हीरो का नाम से मकबूल था। कई फिल्मों में धर्मेंद्र ने बंगाली अदाकारा के साथ काम किया था, जैसे कि शर्मिला टैगोर, मौसमी चटर्जी, सुचित्रा सेन और राखी गुलजार। अब हम आपको फिल्म जीवन मृत्यु में से एक गीत सुनवाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थी राखी।

ये दो गाना धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया था जो नेखते सैफ तक में रिलीज हुआ था। दो और फिल्में मकबूल हुई, वो थी फिल्म शराफत और तुम हसी मैं जवान। दोनों फिल्में अदाकारा हेमा मालिनी के साथ थी। इस दौर में दयारन जयफंतख में धर्मेंद्र का दौर था द नंबर वन एक्टर। फिर वो वक्त आया जब अमिताभ बच्चन का वाकया हुआ, मंजर हुआ। प्रोड्यूसर रामेश सिप्पी फिल्म शोले के लिए पहले अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद किया था, पर किसी न किसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। और फिर भी वही धर्मेंद्र ही थे जिन्होंने रमेश सिप्पी को अमिताभ बच्चन का नाम जिक्र किया था। फिल्म शोले से ही धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती कायम था। फिल्म शोले में काम किए थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म एक साथ थी फिल्म शराफत, उसके बाद सीता और गीता। दोनों एक साथ तकरीबन 40 फिल्मों में काम किए हैं। साल ने खतीन फैफन सेफत धर्मेंद्र के लिए उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी फिल्म शोले, या कहिए हम सब के लिए ये ना भूलने वाली यादगार फिल्म है। इसी फिल्म में से आइए सुने ये डुएट, गाने वाले हैं किशोर कुमार और मन्ना डे।

बेलम शोले का गीत आपने अभी सुना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। धर्मेंद्र में कई खूबियां थी। फिल्म शोले के कामयाबी के बाद कई प्रोड्यूसर्स धर्मेंद्र को अपने फिल्म के लिए पसंद करते थे। हिदायतकार ये ओम प्रकाश धर्म के साथ 3 फिल्में डायरेक्ट किया। फिल्म आये मिलन की बेला, आये दिन बहार के और आया सावन झूम के। तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हिट हुई। उसके बाद ओम प्रकाश ने फिर धर्म के साथ फिल्म आसपास में लिया। साथ में थी हेमा मालिनी। इस बीच धर्म को पता चला कि डायरेक्टर ओम प्रकाश मुंबई में एक बंगला खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। ये सुनकर धर्म डायरेक्टर ओम प्रकाश से कहा, साहेब आगे बढ़े, मुझे रकम देने के बजाय आप बंगला खरीदे, बाद में फिर पैसा देना। ये सुनकर प्रोड्यूसर महेश भट्ट को अपना तजुर्बा याद आया। फजर के सुबह के वक्त फिल्माया गया एक खास मंजर था। कैमरामैन तैयार थे शूट करने को, पर धर्म का कुर्ता पैजामा जो उसे पहनना था उस वक्त साथ लाए नहीं, होटल में भूल गए थे। होटल दूर था और ये मंजर नदी के किनारे सूरज की किरणों में शूट करना अहम था। महेश भट्ट ने कहा, होटल तो बहुत दूर है, मुझे इसी घड़ी को शूट करना है। धर्म ने कहा, साहेब आप परेशान मत होना। सामने एक बस खड़ा था जिसमें एक सरदार कुर्ता पैजामा और पगड़ी पहने हुए थे। किस तरह धर्म सरदार को समझाया वो अलग बात है, पर अचानक महेश भट्ट के सामने खड़ा था धर्मेंद्र सरदार के लिबास में। वक्त जाया ना हुआ, जिस मंजर को शूट करना था पूरा हुआ। बात ये थी कि ये शूटिंग गोवा में नदी के किनारे हुआ और होटल सिर्फ एक रात के बुकिंग था। महेश भट्ट ने धर्म के बारे में कहा, ये लड़का मिट्टी का सच्चा सपूत है। ये फिल्म दो चोर का शूटिंग था। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थी अदाकारा तनुजा। कहानी आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं ये दो गाना।

फिल्म इश्क पर जोर नहीं का गीत पेश था। इस फिल्म में अदाकारी किए थे धर्मेंद्र, साधना और विश्वजीत। धर्मेंद्र ने आवाम के दिलों में छा गया था, खास करके दयारन सैफ तक से लेकर तख तख के दरमियान एक के बाद एक हिट फिल्में बनाया। धर्मेंद्र ने कहा, आवाम मुझे सराहते थे, नाम दिया द ही मैन, पर मन ही मन उसे गिला था, रंज था, इस तरह कि मनफी मतलब नेगेटिव जज्बात दिल में पल रहा था। ऐसे क्यों? लोग तो उसे एक बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर देखता है। और कहा धर्मेंद्र ने, हर साल अवार्ड के लिए तैयार रहने के लिए सूट सिलवाता रहता, लेकिन आखिर में कभी कुछ ना जीत सके। मुझे सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन मैं अपना काम दिल से जारी रखूंगा, क्योंकि फिल्म मेरी जिंदगी है। ये भी कहा धर्मेंद्र ने कि यहाँ बिल्कुल साफ नतीजा ये था कि मैंने यकीनन किसी भी अवार्ड के लिए लॉबी करने से इनकार कर दिया। ये मेरा असूल के खिलाफ है। मैं कई फिल्मों की उम्मीदवार भी थे। मैं अपनी खूबियों में भी खामियां ढूंढता हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ? मैं एक बड़ा फनकार हूँ। मैं अभी भी खुद को प्रमोट करने में बहुत कमज़ोर हूँ। अब हम आपको फिल्म चरस में से ये गीत सुनवाते हैं।

फिल्म चरस में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने काम किए थे। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र अपने आप को कितना अजीज हम्बल शख्स मानते थे, पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स धर्मेंद्र के इन बातों से सहमत नहीं थे। महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने कहा वो धर्मेंद्र को बेहतरीन फर्सटाइल जहीन अदाकारों में से एक मानते हैं। एक और शख्स वो बात दोहराया और उनसे सहमत था, वो था मकबूल कॉमेडियन बीरबल, जो धर्मेंद्र का जिगरी दोस्त था। उसने कहा धर्मेंद्र अपनी कहानी और किरदार की गहराइयों में उतर जाता था और अपने काम से बेहद लगन रखता था। और आज अगर आप लड़ सकते हैं और डांस कर सकते हैं तो आप बड़े स्टार बन सकते हैं। और मैं ये कहूँगा धर्म किसी और से कम नहीं है। और जब धर्म से सवाल किया गया कि वो कई फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में हुई, तो इसमें आपको क्या कहना है, तो धर्म ने कहा मेरे लिए अदाकारी कुदरत का तोहफा है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, मुझे गानों पर डांस करने में थोड़ी सी घबराहट होती थी। आज के लिए मैं प्रोग्राम फिल्मी दुनिया ख़त्म करती हूँ। अगले प्रोग्राम में प्रसिद्ध फनकार धर्मेंद्र के बारे में कहानी आगे बढ़ाएंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारूफ शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं लता मंगेशकर से ये गीत।

सुनहरी दौर का सदाबहार सॉन्ग पेश था शंकर जयकिशन का, सजाया संगीत बोल था शायर शैलेंद्र का। दिल भूल नहीं सकता तुझे, धड़कनों की जरूरत हो तुम से है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, तुम्हारा नाम तुम्हारा जिक्र, एक तुम और तुम्हारी फिक्र, बस यही तो है जिंदगी मेरी।

ग्रीन सॉन्ग पेश था मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। भारत व्यास का लिखा तर्ज था, संगीत से सवारे थे सतीश भाटिया। अगला गीत सुनवाते हैं, आप लुत्फ उठाइए ये दो गाना से।

रोमांचित अंदाज में पेश था ये डुएट। उम्मीद है कि आप सुनने वाले इस प्रोग्राम से मज़े ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ यूआर के ज़रिए सुनने को मिलते हैं, जिसे एक पल के लिए भाग दौड़ के बाद दिल को सुकून मिलता है। ये मैं नहीं, यूआर के सुनने वाले कहते हैं।

0: है हो मुझे देख कर आपका मुस्कुरा।
1: आप सभी को हम तहे दिल से एक बार फिर प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। संगीत जो आपने अभी सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में थी। अब यहाँ से हम एक के बाद एक खूबसूरत नगमे आप तक पहुँचाएंगे, पर इससे पहले शेर अर्ज है। बस में दुनिया में है हुस्न और इश्क यूं जलवा नुमा, रोशनी है शमा में तो सोज परवाने में है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए।

यह नगमा पेश था फिल्म निराला में से ये नगमा लिया है। इस फिल्म में मधुबाला और देवनंदन ने काम किए थे। मौसिकी थी से रामचंद्र की और तर्ज को लिखे थे नगमकार संतोषी ने। कभी कभी कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत मतलब सितिवासी का शिकार हो जाता है। समझ में नहीं पाता कि वो किस चीज से नाखुश है, अपनी जिंदगी से, हालात से, लोगों या अपने आप से। तो जीने वाले झूम के मस्ताना हो के जी।

उमंग भरा गीत पेश था गाने वाली थी आशा भोसले जी। अब आइए सुने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से अगला दो गाना।

मोहब्बत भरे अंदाज में पेश था ये ड्यूएट। इसी अंदाज में लीजिए ये दो गाना यशुदास और लता मंगेशकर की आवाजों में।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये जुगल गीत। नजर नजर जिससे मिलने को तरसती थी, वो रास्ते में यूं मिले। हम नजर उठाकर तड़प गए, हम नजर उठाकर तड़प गए, वो नजर झुकाकर गुजर गए।

फिल्म बुक कौन थी में से ये नगमा पेश था। मदन मोहन की मौसीकी थी, नगमकार था शायर राजा मेहदी अली खान ने। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। कानों में शहद घोलने वाला आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। अब स्वर की मलिका लता मंगेशकर क्या सुनाने को जा रही है, लीजिए पेश है।

फिल्म असली नकनी में से ये नगमा पेश था। शायर शैलेंद्र का लिखा तर्स और मौसिकी थी शंकर जयकिशन की। अब आइए सुने द मैन विद द गोल्डन वॉइस सी एच आत्मा की आवाज में ये गीत।

के दिन थे। द मैन विद द गोल्डन वॉइस सी एच आत्मा से पेश था ये गीत। मौसिकी थी मुरली मनोहर स्वरूप की। अब आइए सुने तलत महमूद से ये नगमा।

चांदनी है वही आसमान है। फिल्म रिश्ता में से ये नगमा पेश था, आवाज़ थी तलत महमूद की। अब आइए सुनिए किशोर कुमार से ये गीत।

0: मैं शायरी ना करूं, किशोर कुमार से पेश था ये नगमा। प्रोग्राम में आखिरी नगमा पेश है और आवाज है
1: मैं।

और इस नगमा के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। नमस्कार। खादिमा थी निशा।

थे गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार चान सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरंजीफ इख्तियार और भाई श्रीमान चान सरजू का भाई छोटकी श्रीमती शुरली सरजू कुंज बिहारी का बड़को लड़कन अनिता अनेत और रिशार्ट के दादा, दो दामाद और एक पतो के ददवा ससुर, दो लड़कन के नाना, एक लड़का का आजा, आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अमीर का प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनामों में न्यूवेरखोफोंदनवेह का रहने वाला जो था। आम्स्टरडम से परिवार चान सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरंजीफ इख्तियार और भाई श्रीमान चान सरजू का भाई छोटकी श्रीमती शुरली सरजू कुंज बिहारी का बड़कू अनिता अनेत और रिशार्ट के दादा, दो दामाद एक पतो के ददवा ससुर, दो लड़कन के नाना एक लड़का का आजा, आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में न्यूवेरखोफोंदनवेह का रहने वाला जो था। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन वुंसदाह हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार्ड फ्रजोरखिंग परिवार सरजू के दुख में शामिल है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉन ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। ये है यू आर उजाला रेडियो। स्टूडियो में कुछ देर तक आपके खिदमत में हाजिर हूँ लेकर कुछ मिले जुले संगीत। सबसे पहला सिलेक्शन है लैला मैं लैला।

हाय क्या बात है लैला लैला तू लैला। सबसे पहला सिलेक्शन हमारा प्रोग्राम में पेश की गई है। हरे को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे स्टूडियो से, आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम और काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एम्स्टरडम शहर में 0204090807 पर 02409 08 07 पर। मिले जुले संगीत में आइए एक गजल सुनते हैं, इस बार है जगजीत सिंह की आवाज़।

मिले जुले संगीत में हम आपको अब एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। जब से हो गई मैं यंग, दिल करने लगा है तंग, क्या बात है आशा जी की आवाज़।

0: तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने तो नहीं किया, शायद आपने किया है। तुमने किसी से प्यार किया?
1: किसी से कभी प्यार किया है?

0: किया है।
1: अरे बोलो ना, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? सिलेक्शन पेश की गई हमारे सभी श्रोताओं के वास्ते, हाँ जी आपके वास्ते भी। युवार का पैगाम उजाला रेडियो आप सुन रहे हैं। और अब जानो मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, फिल्म का नाम शान।

बीते हुए दिनों का हॉट सॉन्ग आपकी खिदमत में अर्ज है। ईमानदार नामक फिल्म से आइए सुनते हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है।

द रॉकिंग सेंसेशन यू आर उजाला रेडियो के जरिए आप ये सिलेक्शन सुने हैं और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम छुपा रखा है। नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं भूपिंदर की आवाज। लीजिए सिलेक्शन हम पेश करें हमारे सभी सुनने वालों के वास्ते।

0: Bender की आवाज उजाला रेडियो के जरिए।
1: अब तेरी जरूरत है, अब तेरी जरूरत।
0: रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप डाल करें एमस्टरडेम में 020-409-0807 सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप डायल कर सकते हैं एमस्टरडेम में 020-409-0807 पर रेडियो के हर एक कार्य के वास्ते। मैं 16 बरस की, तू कितनी बरस की?

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। हार्लेम से लड़कन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरंसी फंतखियार और लड़कन गीता, कविता और अश्विन सरजू के पिता इफानो और संजय के ससुर काजल, चांदनी, अंजना, रागनी और जया के नाना, रुबेन का ननवा ससुर, जेदी का परनाना, अम्स्टरडम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में न्यू वेरख फोंदनवेह का रहने वाला जो था। हार्लेम से लड़कन सरजू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंसी फंतखियार और लड़कन गीता, कविता और अश्विन सरजू के पिता इफानो और संजय के ससुर काजल, चांदनी, अंजना, रागनी और जया के नाना, रुबेन का ननवा ससुर, जेदी का परनाना, अम्स्टरडम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन वोंसडा खालफद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए अम्स्टर्डम से परिवार फान यूनन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल के आयु में फिरंजी फंतखियार और सोनिया फान यूनन सरजू का भाई लियो फान यूनन का सार पैट्रिशिया सबरीना और शांताल के मामू तीन दामाद की ममवा ससुर पांच लड़कन के नाना अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम न्यूवेर खोफोंदनबेख का रहने वाला भी था। अम्स्टर्डम से परिवार फान यूनन सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंजी फंतखियार और सोनिया फान यूनन सरजू का भाई लियो फान यूनन का सार पैट्रिशिया सबरीना और शांताल के मामू तीन दामाद की ममवा ससुर पांच लड़कन के नाना अम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन वोसदख हल्फद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेर वेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टर्डम जाते उससे परिवार सरजू भत्तू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंजीफन तखियार और भाऊजी विधवा कृष्णा सरजू भत्तू का देवर स्वर्गीय भाई श्री सुखराम सरजू का भाई शांता नीता सुरेश संद्रा सरिता और स्वर्गीय राजेश के काका जोरीना और बाकी दामाद पतो के ककवा ससुर लड़कन के आजा आम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सुरीनाम में न्यूवेर खफोंदन वह का रहने वाला था। आम्स्टर्डम जाते उससे परिवार सरजू भत्तू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे है कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंजीफन तखियार और भौजी विधवा कृष्णा सरजू भत्तू का देवर स्वर्गीय भाई श्री सुखराम सरजू का भाई शांता नीता सुरेश संद्रा सरिता और स्वर्गीय राजेश के काका जोरीना और बाकी दामाद पतो के ककवा ससुर लड़कन के आजा आम्स्टर्डम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मिका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन वोंसडा खालफद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार चांद सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंजीफ अंतखियार और भाई श्रीमान चांद सरजू का भाई छोटकी श्रीमती शोरली सरजू कुंज बिहारी का बड़कू अनिता अनेट और ऋषार्थ के दादा, दो दमाद और एक पतो के ददवा ससुर, दो लड़कन के नाना, एक लड़का का आजा। आम्स्टरडम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में न्यू वेर खफोंदनवेह का रहने वाला था। आम्स्टरडम से परिवार चांद सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 74 साल की आयु में फिरंजीफ अंतखियार और भाई श्रीमान चांद सरजू का भाई छोटकी श्रीमती शुरली सरजू कुंच बिहारी का बड़कू अनिता अनेट और ऋषार्थ के दादा, दो दमाद और एक पतो के ददवा ससुर, दो लड़कन के नाना, एक लड़का का आजा। आम्स्टरडम वेस्ट का रहने वाला श्रीमान अमेरिका प्रसाद सरजू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। मीका के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन हल्फ द्री किए जाएंगे। वैसखार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेह 275 आम्स्टरडम उस दौरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार सरजू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल सोमवार को 71 साल की आयु में एनन सीफन तखियार और लड़कन रोबर्टो और त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी आम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा बिसुंदे छोटकन की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल आम्स्टरडम में हो गई है। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थी। आम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार यानी कि कल 71 साल की आयु में एनन सीफन तखियार और रोबर्टो गणपत सिंह त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी और स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा आम्स्टरडम जोइटोस का रहने वाला या तो रहने वाली आम्स्टरडम जोइटोस के रहने वाली विधवा बिसुंदे छोटकन की मृत्यु हो गई है आईएमसी हॉस्पिटल में। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे कल बुध के रात में 6 बजे से 7 बजे तक और शुक्रवार की रात में 6:30 से 7:30 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्टखार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 1:30 बजे जोंदाख हल्फ ट्वी किए जाएंगे। वेस्टखार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। ये सूचना भी है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। खेन बजुक अनहर्स एनो खेन बैठक अनहर्स। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार गणपत सिंह और परिवार छोटकन के दुख में शामिल है।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद जी की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर, और ये उजाला रेडियो है। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे अब।

हल जाए हाय रात ना जाए। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिल्म गाइड का गीत को आप सुने, मुकेश जी हिस्सा लेंगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश जी की आवाज और फिल्म लाल बंगला से गीत को आप सुने। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब शारदा के साथ।

और दिल कभी हमको समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं, ऐसा भी होता है। आप सुने फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कुमार सानू की आवाज और फिल्म परदेश का गीत, स्टेशन उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

ये उजाला रेडियो है और इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दिल। दर्द भरी गीतों के साथ, जिन गीतों को सुन करके कभी तो दिल को सुकून कहिए आराम मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए हम बना रहे हैं, उसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और पसंद करेंगे। तो चलिए पहला गीत आज का प्रोग्राम दर्द दिल में लता जी की आवाज में होंगे।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

लता जी के साथ अमिताभ बच्चन की आवाज भी इस गीत में आप सुने। फिल्म का नाम सिलसिला 1981 के फिल्म और संगीत से सजाइए। इस गीत को शिव हरी। इस फिल्म में काम किए अमिताभ बच्चन के साथ रेखा, जया बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुने कि हम प्यार में धोखा खा बैठे और दामन में दाग लगा बैठे। 1959 की फिल्म धूल का फूल से निकाला हुआ गीत, और इस गीत को सजाए संगीत से एन दत्ता जी। इस फिल्म में काम किए उन दिनों माला सिन्हा के साथ व्रजेंद्र कुमार, नंदा और अशोक कुमार। उजाला रेडियो है, ये प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ पेश है।

कभी दिल दिल से टकराता तो होगा। मुकेश जी की आवाज में आप इस गीत को सुने। बहुत ही पुरानी फिल्म 1948 की फिल्म अनोखी अदा से, और म्यूजिक कंपोजर यानी कि संगीत से सजाइए इस गीत को उन दिनों नौशाद और इस फिल्म में काम किए सुरेंद्र के साथ नसीम बानू।

तेरी यादों में खोया फिर भी खोई नहीं। आप गीत को सुने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कि जिंदगी तेरी राहों में खोई फिर भी खोई नहीं। फिल्म दारिंदा 1977 1977 तक की फिल्म दारिंदा में संगीत से सजाए गीत को कल्याण जी आनंद जी और इस फिल्म में काम किए उन दिनों सुनील दत्त के साथ प्रवीण भाभी और फिरोज खान।

गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, लता जी की आवाज में आप सुने 1956 जसन फैफ की फिल्म शिरीन फरहाद से निकाला हुआ और संगीत से सजाइए एस महेंद्र। इस फिल्म में काम किए उन दिनों मधुबाला के साथ प्रदीप कुमार और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ एक बार फिर मुकेश जी को हम सुनेंगे।

दुआ में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले ऐ मालिक, वापस बुला ले। मुकेश जी की आवाज 1950 निखंतिन फेफ्तर के फिल्म बावरे नयन से निकाला हुआ और संगीत से सजाए रोशन इस फिल्म में काम किए उन दिनों देखा जाए तो विजय लक्ष्मी, गीता बली और पेशी पटेल।

आती रे तुझ बिन जिया उदास रे। लता जी की आवाज में आप गीत को सुने। 1965 निखंतिन फैफन जस्तख की फिल्म पूनम की रात से। पूनम की रात और संगीत से सजाइए सलील चौधरी। इस फिल्म में काम किए किशोर साहू, व्रजेंद्रनाथ और मनोज कुमार।

कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। 1966 नीखंतिन जैसन जस्तक की फिल्म दिल दिया दर्द लिया। और म्यूजिक कंपोजर संगीतकार नौशाद साहब और फिल्म में काम किए दिलीप कुमार के साथ वहीदा रहमान।

यारों ने मेरा चमन लूटकर, मुकेश जी की आवाज में गीत आप सुने 1966 नेखंतिन जसन जस्तख के फिल्म देवर से निकाला हुआ। रोशन साहब संगीत से सजाए और इस फिल्म में काम किए धर्मेंद्र के साथ शर्मिला तागो

बेवफा है मगर क्या करे, अपनी राहें जुदा है। लता जी की आवाज में आप सुने 1968 नईखंतिन अख्तन जस्तक की फिल्म एक कली मुस्काई, एक कली मुस्काई, और संगीत से सजाए मदन मोहन। और इस फिल्म में काम किए अशोक कुमार, निरूपा रॉय, जॉय मुखर्जी।

अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। 1969 1969 के फिल्म रात के अंधेरे में और संगीत से सजाए सुरेंद्र कोहली जी, फिल्म में काम किए भगवान दादा और सोनिया सहनी और देव कुमार। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल में। एक आखिरी गीत आज के लिए पेश है।

दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो।

ऊजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा